सार सहज सुख हो ही हर सुडनी रह न कोई हिच खाजे खिचन धर जाइए जे बहुर दुनिया आइए।